0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
2: जी,
0: जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
0: ये मोरुंग होता क्या है?
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्त करघा, स्थानीय व्यंजन

0: इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी,
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी,
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी,
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800044559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है, और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी। इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा। तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया।

0: लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
0: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
0: हीरा सिंह ने गाय को फुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था।

0: नहीं लगे।
1: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे तुमसे यहां मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
2: जी सेठ जी।
1: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
2: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
5: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
4: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
6: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
5: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
4: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
5: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते बेटा।
0: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
1: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
0: ओह।
1: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
0: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
1: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
0: नहीं,
1: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
0: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
1: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
1: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
1: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
1: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
2: हाँ जी बताइए।
1: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
2: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
3: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों, सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
4: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था, उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
1: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
1: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा,

0: तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
1: मुझे यही चाहिए।
0: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
1: नहीं।
0: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
1: जी नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
0: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
1: यूं ही?
0: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
1: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
0: अच्छा अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे। अच्छी बात है, तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो। खुश?
1: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
0: पर बेटा ये तो
1: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
0: बहुत महंगी है, 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
1: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
1: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
1: आजा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बिल्कुल बढ़िया।
2: बिल्कुल मॉनसून में
1: बारिश का आनंद ले रही हो, है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखिए कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मॉनसून चलेगा।
2: बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मॉनसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
1: आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती। तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित है, महिलाएं और फिटनेस, ये हमारा पहला विषय है। और दूसरा
2: है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर। हाँ। और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए।
1: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है।
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए, मितव्ययता से रहना चाहिए, सोच समझ कर कहाँ जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है,
2: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है, हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है या फिर आप अपने अच्छे तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं?
1: तो ये आप हमें बता सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए आज फिटनेस की बहुत सारी बात हो रही है। अरबी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह, एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। तो आप जहां पर रहते हैं, आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं।
2: क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो तर ये ज्वार ही खाते हैं, तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं?
1: हाँ, तो रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर

0: बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं हमारी
1: जी
0: दादी नानी के ज़माने से कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें सब्जियां उसके साथ खाई जाती
1: जी
0: है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें
1: जी
0: लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा
1: हाँ
0: हो,
1: जी
0: दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और वो
1: गीत
0: है
1: संगीत
0: संगीत। चलिए
1: जी
0: सुनते हैं एक गीत।

0: आरती, देखो पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज़ें, और इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान रखें, और ख़ास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीज़न हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो चलो फिटनेस के ऊपर हम और कुछ बताने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक लेखिका हैं ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका हैं, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं। तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल, और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करिए, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं, आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
3: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी

0: पहली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत
1: बिल्कुल
0: सारा धन्यवाद।
1: सखी सहेली आप सुनती रही हैं
0: जी
1: लगातार,
0: जी बिल्कुल।
1: तो आपको कैसा लगता है?
0: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो
1: सखा भी
0: समय
1: सुनते
0: सखा भी सुनते
1: हैं
0: हैं,
1: ये
0: तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ
1: जी,
0: आकर।
1: हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
0: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है,
1: बिल्कुल
0: और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा?
1: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
0: नहीं, अमूमन नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये, कि तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
1: जी
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहाँ तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी,
1: जी
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ
1: बैडमिंटन खिलाड़ी
0: और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है।
1: जी
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की, तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं, सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं तो आपको बीमारियाँ फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियाँ आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी और वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: और तब मैंने एक कहानी लिखी फतेह, इसी
1: जी
0: थीम को
1: जी
0: लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, यानी महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा, तो प्रोटीन को अपनी डाइट में

0: शामिल कीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
1: बिल्कुल
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ, चना चावला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें, तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार, तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहाँ हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो

0: आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं, तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
1: ये मेरा ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार। तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहाँ हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहाँ, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए,
0: जी
1: है
0: जी
1: ना। फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देख रेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज़ को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूँ आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है,
1: होती है,
0: क्योंकि वो नियमित रूप से
1: गर्दन की
0: कल
1: होती है,
0: हाँ
1: गर्दन की
0: गर्दन की,
1: होती
0: हाथ
1: है।
0: की।
1: तो मैं भी जब लिखती हूँ, मैं अभी भी कागज़ कलम पे लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज़ और कलम ही चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी। कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जमाना बदला है ना। इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
0: जी
1: एक जमाना था जब मैंने ये चीज़ें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। और जमाना बदला है तो, और अब चीज़ें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नज़रिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि
0: हाँ
1: हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
0: जी
1: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
0: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
1: मैं ना खूब मस्तीखोर हूँ, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता
0: जी
1: है।
0: जी
1: मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहाँ म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं।
0: थिरकने लगते
1: तो
0: हैं।
1: मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं, और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
0: किसने
1: जाना,
0: जाना, सुनते
1: तो
0: हैं।
1: बस यही गाना सुनते हैं।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका। विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी। आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो आरती, देखो हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें बताई।
1: जी
2: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
1: बिल्कुल, ये
2: कुछ
1: भी
2: राज।
1: फिटनेस में ही आता है।
2: तो ये उन्होंने हमें
1: जी
2: बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा, है
1: बिल्कुल।
2: ना?
1: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
2: हाँ,
1: उसमें।
2: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
1: बिल्कुल।
2: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है,
1: जी
2: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो
1: बिल्कुल,
2: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
1: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
2: हाँ,
1: जाएगी।
2: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
1: जी
2: घर की व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती
1: जी
2: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
1: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीज़ें ले सकते हैं। और ये जो जंक फूड होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ें होती हैं उनको अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
2: हाँ, डिब्बा बंद जो भोजन आजकल बहुत

0: चलन में है,
1: जी
0: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज़
1: बिल्कुल,
0: बनाकर
1: क्योंकि हम
0: खाएं तो।
1: छोटी सी भी चीज़ जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
0: बिल्कुल
1: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज़्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
0: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
1: बिल्कुल, और जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे किशोरावस्था हो या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है या रोजनवृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें ज़रूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का
1: बिल्कुल
0: सामना करना पड़ता है उनको। जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके
1: बिल्कुल
0: अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है।
1: बिल्कुल
0: इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
1: बिल्कुल, अगर आप
0: ज़रूरी
1: जिम
0: है।
1: नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके ज़रिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं, तो आप
0: बिल्कुल
1: घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फ़ायदा दिखने लगेगा।
0: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बात कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी है जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग और मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी है वो ये भी लिख रही है कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हॉर्मोन्स है वो निकलते हैं, जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास, फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी। और एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ, संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ, मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टूगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है, पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारी सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिजाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिजाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिजाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
0: बिल्कुल। और ये साड़ियां मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से

0: तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
1: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
0: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं, वो
1: जी,
0: देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों
1: जब वो
0: का
1: त्योहार
0: संग्रह
1: जब वो पहन के आती है ना, तो पता चलता है जहाँ त्योहार है
0: बिल्कुल।
1: जी
0: और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत
1: जी
0: सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षैतिज, धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है। कनाप फानेक विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग
1: बिल्कुल
0: अलग डिजाइन को दिए गए हैं।
1: जी। और फिर है मोयरोंग फी। मोयरोंग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र, जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं, और इसे GI मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखेई फी, ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखेई क्षेत्र में बुना जाता था।
0: हाँ,
1: और
0: और
1: जी
0: सामी लामी फी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है।
1: जी और कभी इसे मणिपुर में प्रतिष्ठा और योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है, एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो, या फिर आपके कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर जाते हो, तो वहाँ से एक साड़ी ज़रूर मंगवाइएगा।
1: बिल्कुल
0: उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं
1: हाँ
0: और उसके
1: बिल्कुल
0: बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि
1: हम्म,
0: शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारी सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज़्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें खुलती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब ये होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च
1: बिल्कुल
0: के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं, और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है, और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं, अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है, या एक और एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन
1: हाँ
0: ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है।
1: जी
0: ये हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय
1: जी
0: से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
1: जी और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मित्रता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ये उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत
1: गीत
0: सुनना
1: सुनना
0: है।
1: है।

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है,
1: अच्छा
0: महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है। और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़ी ढंग से उसे बना भी लेती हूँ,
1: अरे
0: क्योंकि
1: वाह।
0: उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है
1: टूटती
0: किनारों
1: है
0: से,
1: जी।
0: इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज़्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके, और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके,
1: अरे
0: और थोड़ा
1: वाह,
0: दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं महाराष्ट्र में।
1: बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसे भी बता दिया आपने
0: बिल्कुल, पारंपरिक जो
1: जी।
0: रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से
1: जी।
0: उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीज़ों का एक स्वाद जो है
1: बिल्कुल
0: वो निखर
1: बढ़
0: कर
1: जाता
0: आता
1: था,
0: था।
1: खाली मिक्सी में आप पीस दें तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल, अब और भी
1: हाँ
0: व्यंजन
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है, ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, आधा चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, आधा चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरनी डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से जा
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर बन रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के

0: आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेके, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना ले इसका।
1: अच्छा।
0: वो तैयार कर ले और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके। अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया
1: बन
0: जा सकता
1: सकता
0: है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल ले, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की, जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन भी उसमें आप ले सकते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का।
0: हाँ।
1: तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबल स्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंथ सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए। लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए। तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए। फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से, मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छे तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए। फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक साथ ही हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी, ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है, इन्होंने रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार के स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक लें या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल लें और यह स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल लें और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगाएं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी, जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
1: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ज्वार का आटा, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 मुट्ठी कटा हुआ ताज़ा धनिया, 3 कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब 1 बाउल में जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको। फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं, आलू का मसाला, या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं कि उसे पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
1: बना के देखिए।
0: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम इसको किसके साथ खाएंगे.
0: बिल्कुल इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल,
0: इसी के
1: स्वस्थ
0: साथ,
1: रहें.
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन है। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।
1: होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है,
2: जिस देश में गंगा बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है।
0: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
3: नमस्कार यूनुस भाई और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
0: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
4: नमस्कार यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
0: मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
3: जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे गाया करते थे। टीचर कभी भी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
0: वाह वाह।
3: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे।
0: वाह वाह।
3: इस तरह से मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज की तरफ ज्यादा।
0: ये किस शहर की बात है?
3: अहमदाबाद की, जहां मैं रहता हूँ, मेरी तो पैदाइश वहीं की है।
0: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ
3: जी।
0: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
4: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के और जहाँ पे मैं सीखता था, बेसिकली इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया और मुझे याद है एक बार कॉम्पिटिशन में मुझे गाने का मौका मिला तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, वो गाने का मौका मिला।
0: क्या बात है।
4: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया।
0: क्या बात है। तो वही गाना सुनाइए फिर।

0: और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात, गोविंद के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं
0: जी
1: पढ़ रहे थे?
0: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
1: हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
0: दोनों अलग अलग हैं। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली मैंने प्रयागराज संगीत समिति से। और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो इस
1: बगावत
0: प्रोफेशन
1: करनी
0: को मैंने
1: पड़ी
0: चुना।
1: कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
0: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ। मैंने

0: झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ,
1: अच्छा ये भी
0: क्योंकि
1: हुआ है।
0: हाँ गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे, तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है,
0: हाँ नहीं
1: सिंगर है। मुख्तार
0: जी
1: भाई आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
2: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे
0: क्या बात है।
1: बाप रे बाप,
0: हाँ
1: ये क्या मामला
2: और
1: है।
2: मैं मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। मैं जब
1: हाँ
2: पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा।
1: जी
2: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में,
1: हाँ
2: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है
0: सच में सच
1: कि
0: में।
1: कोर्ट रूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता
2: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते हैं ना
1: है। जी
2: कि,
1: जी
2: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है
1: हाँ
2: आज भी,
1: हाँ
2: मतलब मेरा एनरोलमेंट है।
1: जी
2: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया। और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।
1: हाँ
2: तो
1: हाँ
2: ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी
1: क्या
2: मेरा।
1: बात है। अच्छा तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं क्योंकि
2: हाँ
1: वो पॉपुलर गाने हैं,
2: जी जी
1: पर मैं यहां चाहता हूं कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिले।
2: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद
1: क्या
2: में,
1: बात है, क्या बात है, सरदार
2: ये
1: मलिक साहब का संगीत है
2: जी
1: ये।
2: जी तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है,
1: वाह वाह
2: तो
1: वाह,
2: ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता
1: एक
2: है।
1: गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर
2: वाह
1: पुकारो,
2: हाँ क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है
1: ये
2: ना,
1: डांसिंग का म्यूजिक।
2: तो 2 लाइनें हो।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते कि उनसे क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल गोविंद, आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि आँख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम सीधा सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ

0: एकदम सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। हाँ,
1: एकदम
0: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता
1: क्या
0: नहीं
1: बात है, क्या बात है। अच्छा,
0: उनको।
1: मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो
0: हाँ
1: गैर फिल्मी हैं, तो
0: हाँ
1: कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
2: जिन

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करूँगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज़्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है। गोविंद, आप ये मानते हैं?
2: यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
1: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं। और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
0: क्या
1: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
0: ये बहुत जरूरी बात है। तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर
2: चार

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना, वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया, तो तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज, ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने, तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो

0: देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने हैं
0: हाँ
1: तो, लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी
0: तो कौन
1: लगी
0: सा
1: है
0: गाना चुन रहे हो आप?
1: जो

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत
1: यस
0: इंदीवर का लिखा हुआ ये
1: इंदिवर ही है,
0: गाना
1: करेक्ट,
0: सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही
1: वही
0: बात
1: बात
0: गाएंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए, उनके गाने,
0: वाह वाह वाह,
1: जैसे फिल्म कभी कभी का,
0: हाँ

0: अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज़ करने जाते हैं तो ज़्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी।

0: जहाँ रफी साहब से कुछ ज्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते
1: क्या बात है,
0: हैं ये कि देश,
1: क्या
0: इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
1: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती हैं,
2: शायद नंबर की ज्यादा आती हैं।
1: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल,
1: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
1: बहुत ही
2: हाँ
1: जज्बाती गाना है।
2: हाँ सारंगा तेरी याद में है, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं।
1: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा,
1: है ना?
0: तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें
1: यस
0: बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह,
1: हाँ
0: मेरे महबूब नहीं ये
1: हाँ
0: नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे।
1: हाँ
0: लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफ़ी
1: एग्जैक्टली
0: साहब की भी गजलें मौजूद हैं।
1: हाँ
0: तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूँ तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूँ। नहीं तो मेरे
0: अच्छा
1: फेवरेट हमेशा रफ़ी साहब रहे हैं,
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: रफ़ी
0: वाह
1: साहब को मैं
0: वाह।
1: बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूं कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो
1: ये तो
0: जाएगा
1: सही बात
0: मामला,
1: है।
0: है
1: हाँ
0: ना?
1: हो

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना, कितना
1: मैंने
0: अच्छा
1: भी, मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ भारती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहाँ हमने गज़लों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु
2: मैं वो सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है गजलों
0: यस
1: का, जब
0: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए, क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज़ को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा सा भी अगर ऐसा सोचते, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं,
0: हैं।
1: मतलब 99%, 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है।

0: और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है,
1: हाँ
0: जैसे धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है। और
1: अच्छा
0: मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, पर आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ
1: अच्छा,
0: नहीं।
1: इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना,
0: नहीं,
1: आज
0: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर
0: आप
1: वाले पे छोड़ दो।
0: ऊपर वाले को, हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई
1: हाँ
0: संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते,
0: जी
1: अमूमन आपको सब गाने याद हैं।
0: जी
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
0: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे, तो हम लोगों को पता है, हम फिल्म में जब जैसे देखने जाते, तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी,
1: बिल्कुल।
0: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं। तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है वो।
1: चलता चला जाता है। तो
0: हाँ
1: कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने
0: जी
1: कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा
0: हाँ,
1: कर रखा
0: और
1: है।
0: वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि एक जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है, तो वो नजर वहां जाएगी। वो कहते हैं ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है। तो खरीदना ही नहीं चाहिए
1: सच में गोविंद,
0: बैंडेज।
1: कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
0: हाँ, तो कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज़, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है,
1: हाँ
0: मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद हैं, कुछ गाने एकदम पूरे याद हैं, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, तो दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है,
1: अच्छा,
0: लेकिन फिर
1: इतने
0: भी।
1: सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
0: मैं अब इन दिनों अभी काफ़ी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में, लेकिन ये हाँ कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है, या आनंद जी भाई के साथ करें, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पर। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है,
1: बिल्कुल,
0: अनलेस
1: बहुत ही
0: के कोई
1: बढ़िया।
0: ऐसा आप रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा कभी देखना पड़ा।
1: गोविंद आप
0: एग्जैक्टली
1: बताइए।
0: नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि
1: हाँ
0: सारे
1: हाँ
0: म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती हैं, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं,
1: एग्जैक्टली
0: चाहे वो
1: यस।
0: सिंगर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, साउंड हो, कोई भी हो। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए, तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है,
0: जी
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
0: जी
1: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब
0: जी
1: सिंगर्स भी बहुत सारे, तमाम
0: जी
1: लोगों के साथ उनकी कुछ यादें हैं, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
0: मैं मतलब मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया, अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं, तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था, तो सारे म्यूजिशियन बजा रहे हैं, और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था, तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले, तो उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर। तो
1: इतनी
0: ये जो
1: बारीकी से
0: इतनी
1: वो
0: बारीकी से जो सुनना,
1: जी,
0: ये
1: और
0: एक
1: प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो

0: 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
1: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहां आप नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था। तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूं कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जो गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
0: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
0: वो गाना सुनते हैं हमसे।

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया तो मैं, वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है म्यूजिक, चुराया हुआ नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव, कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, कभी कभी तो होता है। और काफी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनका सपोर्ट करता कि तभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती है।
1: हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह।
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो हम शुरू हो जाते हैं।
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था ऐसा।
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं। शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहाँ होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होके गाया है,
0: वो तो हार्मोनियम लेके,
1: लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने
1: काफी शोज इनके साथ किए, तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों

0: मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे जितना अच्छा। आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
1: यस, एक बहुत ही सच्चाई के पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
1: सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।

क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है जी।

0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: पे पसीने से सींच कर एक मेडल पैदा करेंगे। इस पदक की चमक विजेताओं को जीवन में कभी नहीं भुलाने वाली खुशी देगी। बर्मिंघम से चार साल बाद खेलों का कारवां स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचा है। हालांकि इस बार चार साल का ये अंतराल कुछ ज्यादा ही मुश्किलों से भरा रहा है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन दो साल पहले विक्टोरिया ने लागत बढ़ने और फंड की कमी का तर्क देकर आयोजन से अपना हाथ खींच लिया। इससे कॉमनवेल्थ फेडरेशन मुश्किल में पड़ गया। आयोजन से दो साल पहले नए मेजबान की तलाश का काम आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद आखिरकार ग्लासगो को मेजबानी सौंपी गई, लेकिन यहां भी एक अड़चन आ गई। ग्लासगो ने भी कम बजट की बात कहकर ये शर्त रख दी कि वह सिर्फ उन खेलों का ही आयोजन कर सकता है जिनके लिए वेन्यू उनके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में खेलों की संख्या में कटौती की गई। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 19 खेलों के मुकाबले ग्लासगो में यह संख्या सिर्फ 10 रह गई है। जो खेल स्पर्धाएं ग्लासगो में होने जा रही हैं, उनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जूडो और बॉक्सिंग शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन 9 खेलों को हटाया गया है उनमें रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन शामिल हैं। इस फैसले का बड़ा असर भारत की पदक की संभावनाओं पर भी पड़ा है। हम आपको बता दें कि बर्मिंघम में भारत ने बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन को छोड़कर बाकी सभी खेलों में हिस्सा लिया और 61 मेडल्स भी जीते थे। भारतीय दल को बैडमिंटन में 2, क्रिकेट में 1, स्क्वाश में 2, टेबल टेनिस में 7 और रेसलिंग में 12 मेडल मिले थे। ऐसे हालात में पदकों की संख्या का कम होना तय है। अब उन खेलों की बात करें जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा हैं और जहां भारत के लिए पदक की बेहतर संभावना है। भारत को बर्मिंघम में बॉक्सिंग में 7, जूडो में 3, वेटलिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, लॉन बॉल में 2 और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल मिला था और कुल 31 मेडल भारत ने जीते थे। इस बार भी पदकों की संख्या इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हमारी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इस बार के 125 खिलाड़ियों का भारतीय दल मेडल के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देगा। इस दल में 77 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे बड़ा 32 सदस्यों का दल इस बार एथलेटिक्स में पदक की दावेदारी के साथ उतरेगा। इसके बाद मुक्केबाजी और जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन और भारत की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की प्रतिनिधि और वरिष्ठ खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, आपका स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हिमिका, आखिर तमाम हाना के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने जा रहा है, लेकिन पिछले आयोजन के मुकाबले इस बार 19 की जगह सिर्फ 10 खेल होंगे। इसका क्या असर इन खेलों के आयोजन पर पड़ सकता है?
1: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स, 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब, और आपने भी इसका जिक्र किया, कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे बॉक्सिंग है, जिसमें हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ, ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा मेडल टैली में।
0: जी, और भारत के खिलाड़ियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये गेम्स न सिर्फ पदक जीतकर मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि उसी साल होने वाले एशियन गेम्स और एक साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए भी अच्छा मंच प्रदान करता रहा है। इस बार कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी का न होना क्या एशियाई खेलों और ओलंपिक्स में भी भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा। तो उस हिसाब से तो जो एथलीट जाते हैं, और ये

0: हम सबको पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना ही इनफ नहीं होता. एक एथलीट के लिए सबसे जरूरी होता है कंपटीशन. एक क्लासिक एग्जाम्पल है नीरज चोपड़ा का कि वो जिस एंगल में भाला पहले फेंकते थे, फिर उनको पता चला कि उस एंगल में वो अचीव नहीं कर पा रहे, उनका वो जो 90 जो द ड्रीम मार्क है, तो उन्होंने उस चीज को चेंज किया. तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं CWG पर, एशियन गेम्स में जाएंगे और आगे ओलंपिक में जाएंगे LA में, उनके लिए इट्स डेफिनेटली अ लॉस्ट चांस. और ये जैसा आपने कहा, खिलाड़ी का मनोबल और साथ में खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस रहता है, वो उनको इस बार नहीं मिलेगा. पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी इंडिया में हम लोग इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर. आप अगर देखें तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आज की तारीख में हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं, कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2025-26 में हमने 36 हमने कॉम्पिटिशन्स जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हमने इंडिया में होस्ट किया. अभी 26 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, हम और 11 जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इंडिया में हम होस्ट करेंगे अगले साल. 19 ऑलरेडी पाइपलाइन में है. ये सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं, अच्छे स्तर के कॉम्पिटिशन्स हैं. तो खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन्स मिलते रहे हैं, आगे भी मिलेंगे. पर वो जो CWG से एशियन गेम्स जाने का एक जो वो आप कह सकते हैं चार्म होता है, वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा. और कुछ कुछ खेलों में ये लॉस जरूर रहेगा.
1: हिमिका, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है, जिसमें हम ढेर सारे पदक भी जीतते रहे हैं, लेकिन जो खेल इस बार शामिल किए गए हैं उसके लिए हमारे खिलाड़ियों ने तैयारियां कैसी की हैं, पदक की कितनी बेहतर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं?
0: देखिए, हमेशा कोशिश यही होता है, वो चाहे खिलाड़ियों का हो, वो चाहे सरकार का हो, जो एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का तैयार किया है, ग्रास रूट से लेके एलीट एथलीट तक सपोर्ट देने का. हमेशा एफर्ट यही रहता है कि कंपटीशन जिस स्तर का भी हो, जैसे कि इस बार ट्रंकेटेड है, पर एफर्ट में कोई कमी नहीं है, ना एथलीट के तरफ से ना सपोर्ट के तरफ से. तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली पिछले बार के मुकाबले वो हर डिसिप्लिन जिसमें हम इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम मेडल तो नहीं लाएंगे, क्योंकि पिछले पूरी CWG साइकिल में, और व्हेन आई से CWG साइकिल, चार साल का साइकिल होता है, उन चार सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जब हमारे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मुझे कहते हुए खुशी है कि एटलीस्ट हर एक इन डिसिप्लिन्स में, एथलेटिक्स खास करके, क्योंकि उसमें हम लोगों की संभावनाएं काफी ज्यादा है. हम सब जानते हैं कि सारी नजरें टिकी हुई हैं नीरज चोपड़ा पे, तो नीरज चोपड़ा तो चलिए मैंने वो एक्सपेक्टेड है, वो होने ही वाला है. पर बाकी भी, जैसे आप मुरली श्रीशंकर ले लीजिए, तेजस्विन ले लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग. तो पिछले कई महीनों में ये सब इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे हैं. इंडिया में तो ट्रेनिंग लेते ही है, साई बेंगलुरु में भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, NSNIS पटियाला में भी ट्रेनिंग करते हैं, बट ये नजर में रखते हुए कि वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके स्तर पे, उनके जैसा उनको ट्रेनिंग का मौका मिले, फॉरेन कोचेस का सपोर्ट मिले. तो ऑलरेडी जैसे एथलेटिक्स वाले पोलैंड में है, स्पाला में, साइकिलिंग के बच्चे हैं फ्रांस में, ऑलरेडी वो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, जिम्नास्टिक्स के बच्चे हैं वो ऑलरेडी UK पहुंच चुके हैं और वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं. ऐसे और बाकी डिसिप्लिन्स का भी वही है, 20 से ज्यादा फॉरेन कोचेस इंडियन कोचेस के साथ लगे हुए हैं. इंटरनेशनल जो कोचेस है उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन तैयार कर चुके हैं, बहुत सारे कोचेस खुद ऑलरेडी ओलंपियंस रह चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जिस तरह के टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है. और सब कुछ मिला के, मतलब वेदर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, फॉरेन कोचेस हो, या हमारे देश में जो साई सेंटर्स और अकेडमीज में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब मिला के तैयारी एकदम 100% से ज्यादा है. और इसीलिए उम्मीद ये है कि पिछली बार जितना मेडल इन सब डिसिप्लिन में हमने जीता था, एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा ही मेडल इस बार हम लेके आएंगे.
1: जैसा कि हमने बताया कि इस बार एथलेटिक्स में भारत का सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है. ट्रैक इवेंट में पुरुष वर्ग में पदक की एक बड़ी उम्मीद राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर में हिस्सा लेंगे. हम आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के बीच 100 मीटर स्प्रिंट में हाल के दिनों में कमाल की प्रतिस्पर्धा रही है. हालांकि गुरिंदर वीर सिंह वर्तमान में 10.09 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ देश के सबसे तेज धावक हैं. उधर अनिमेश कुजूर ने जर्मनी में 10.14 सेकंड का समय निकालकर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है. हालांकि ग्लास

0: वो में भारत की तरफ से 100 मीटर दौड़ में भाग लेने का मौका गुरिंदर वीर सिंह को मिलने वाला है। उधर 200 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे तेज 20.32 सेकंड का समय रखने वाले अनिमेश कुजूर करेंगे। विशाल टीके की दावेदारी 400 मीटर दौड़ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले और रमेश का दावा 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में होगी। गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर, तेजस शिरसे 110 मीटर हर्डल, यशस पलाक्ष 400 मीटर हर्डल और संतोष कुमार तमिल रासन 400 मीटर हर्डल में भाग लेंगे। ट्रैक विमेन्स कैटेगरी में रशदीप कौर 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, नीरू पाठक 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, अंसा बाबू 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज 5000 मीटर, प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर वॉक, रवीना गायकवाड़ 10000 मीटर वॉक में शामिल हैं। उधर फील्ड मेंस कैटेगरी की बात करें तो देव मीणा और कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श राम जे हाई जंप, तेजस्वी शंकर हाई जंप, डेकाथलान मुरली शिशंकर और लोकेश सत्यनाथन लॉन्ग जंप, प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, समरदीप सिंह गिल और तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो में भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। फील्ड वीमेन्स कैटेगरी में पूजा सिंह हाई जंप, मनप्रीत कौर शॉटपुट, सीमा कालीरमन और निधि रानी डिस्कस थ्रो में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। वैसे अगर दोहा डायमंड लीग में चौथे नंबर पर रहे नीरज की बात करें तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी संभावनाओं को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं।
1: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेल रहा, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
0: भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में ग्लासगो जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए पदकों की वास्तविक तौर पर कितनी बेहतर संभावना है?
2: देखिए, एक्सपेक्टेशन पिछली बार से कुछ कम नहीं है। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इस बार एथलेटिक्स से ही है और जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में कंटिंजेंट जा रही है, पर हम ये भी याद रखें कि एथलेटिक्स में भी सारी डिसिप्लिन्स नहीं है, पर जो डिसिप्लिन्स में भारत स्ट्रांग है जैसे जेवलिन हो गया, ट्रैक एंड फील्ड, ये सारे हमारे जो जंप्स है, क्योंकि वो सब है इस बार के CWG में, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछली बार का जो नंबर था उसको शायद हम कुछ एक या दो मेडल से क्रॉस कर जाए इस बार। एथलेटिक्स के लिए पिछले सीजन में ही और कुछ लास्ट एक डेढ़ महीने की बात होगी, टोटल 26 नेशनल रिकॉर्ड टूटा है सिर्फ एथलेटिक्स में। तो अभी एथलेटिक्स में हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि परहैप्स द बेस्ट इन द लास्ट फ्यू कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। अभी इस टाइम पे हमारा जिस तरह का बेंच स्ट्रेंथ है, हमारा जिस तरह का प्रेपरेशन है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बहुत क्रिटिकल होता है, ये हम सबको पता है, तो इस बार क्योंकि ये यंग एथलीट्स है जो बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ड्रिवन है, एक भूख है उनमें, एक हंगर है, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है बहुत कुछ।
0: एथलेटिक्स के बाद जिस खेल से भारत को सबसे अधिक उम्मीद है उसमें बॉक्सिंग सबसे ऊपर है। इसमें पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 65 किलोग्राम में आदित्य प्रताप सिंह, 70 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में अंकुश, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया और 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल की चुनौती होगी। महिला वर्ग के 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लांबोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घंगास, 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी और 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन की दमदार चुनौती होगी। साक्षी चौधरी इन खेलों में अपनी संभावनाओं के बारे में क्या कह रही हैं? वो सुनते हैं।
3: जी, हम अभी कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम 9 जुलाई को आयरलैंड जाएंगे जहां हमारा मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा, वहां से हम डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे, तो अभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
0: पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम में भारत की पदक की बड़ी उम्मीद है सचिन सिवाच।
4: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, अपने अपोनेंट्स के सारे उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है, सभी के गोल्ड लिए आने हैं।
0: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को भी बॉक्सर्स से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
5: देखिए, 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे, उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।

0: बॉक्सिंग की बात करें तो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों में ही नहीं, एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी हम इस खेल में पदक जीतते रहे हैं। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और जादूमणि सिंह जैसे उभरते हुए नाम है, वहीं महिला वर्ग में टोक्यो 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंघास जैसे बॉक्सर्स की भी अपने अपने वर्ग में तगड़ी चुनौती होगी। पदक की कितनी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बॉक्सर्स के रहते हुए?
1: देखिए, बॉक्सिंग हमेशा से हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है।

0: चैंपियनशिप्स में थर्ड नंबर पे उन्होंने फिनिश किया और इंटायर वुमेन्स स्क्वाड ने मेडल्स लेके आए। तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा है और आई वुड गो एज फार एज टू से कि महिलाओं का अभी इस बार CWG में मुझे लगता है चांसेस पुरुषों से भी ज्यादा है। तो हम अपने जो नजरें हैं वो महिला बॉक्सर्स पे टिकाए रखें, उनको उनके गेम्स को देखें और मुझे लगता है कि वाकई में मजा आने वाला है और आगे जाके इनमें से बहुत सारी लड़कियां LA तक तो जरूर खेलेंगी। मुझे ये लगता है कि ये सब लंबे टाइम, हालांकि बॉक्सिंग रेसलिंग ये थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब लंबे टाइम के लिए है और खेलेंगे और CWG में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे।
1: वेट लिफ्टिंग भी ऐसा खेल है जिसमें भारत कुछ पदकों की उम्मीद कर सकता है। इसकी टीम की बात करें तो पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह, 65 किलोग्राम में एम राजा, 79 किलोग्राम में अजय बाबू, 94 किलोग्राम में दिलबाग सिंह और 110 किलो से अधिक भार वर्ग में लवप्रीत सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे। महिला वर्ग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू 48 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम, बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम, हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम, संजना 77 किलोग्राम, सेराम निरुपमा देवी 86 किलोग्राम और मार्टिना देवी 86 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में भारत की उम्मीदों का केंद्र होंगी। फिट होने के बाद वापस लौट रही मीराबाई चानू पदक को लेकर कितनी आशावान है ये सुनते हैं।
2: बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बर्मिंघम में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। हम सबका होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है।
1: जी हिमिका, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भी हमारे अच्छे खासे पदक आते रहे हैं। पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू फिट होकर वापसी कर रही हैं। इस बार दोनों वर्गों को मिलाकर हम क्या उम्मीद कर सकते?
0: देखिए, मीरा का तो ये है कि उसको मैजिक मीरा कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक मैजिशियन है। जब हम मीराबाई को देखते हैं और जैसा उनका कद है और छोटी सी लड़की है मणिपुर से, जैसा कि आपने कहा इंजर्ड थी, पर वो उसने काफी दिनों तक USA में रह के ट्रेनिंग भी किया, रिहैबिलिटेशन भी किया, तो मीरा का तो डेफिनेटली एक मेडल चांस हम कह ही सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, तो वेटलिफ्टिंग में मीरा का चांस हम इक्वली उसी तरह से सोच सकते हैं। भारत को गोल्ड मिलने वाले हैं, उसमें से एक तो मीराबाई चानू के नाम होना ही चाहिए और होगा भी शायद।
1: तो दोस्तों, ये थी भारतीय खेल प्राधिकरण साई की वरिष्ठ खेल पत्रकार और प्रतिनिधि हिमिका चौधरी। आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और जैसा मैंने कहा, लेट्स चीयर फॉर भारत।
1: जूडो में पिछली बार भारतीय दल ने 3 पदक जीते थे। इस बार न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ने बल्कि पहले गोल्ड मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। चुस्ते, स्फूर्ति और ताकत के इस खेल में भारत की तरफ से मेंस कैटेगरी में हर्ष सिंह की चुनौती 60 किलोग्राम, रोहित बसीर माजगुल की 66 किलोग्राम, अरुण कुमार की 73 किलोग्राम, हर्ष टोकस की 81 किलोग्राम, करणजीत सिंह मान की 90 किलोग्राम, अवतार सिंह की 100 किलोग्राम और यश घंगास की 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में चुनौती है। महिला वर्ग में अस्मिता डे 48 किलोग्राम, श्रद्धा कदाबुल चोपड़े 52 किलोग्राम, यामिनी मौर्य 57 किलोग्राम, उन्नति शर्मा 63 किलोग्राम, इनुन गनबी ताखिल्लाम्बम 70 किलोग्राम, इशरूप नारंग 78 किलोग्राम और तुलिका मान 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अपना अपना दावा पेश करेंगी। पिछली बार सिल्वर मेडल जीतने वाली तुलिका मान ने इस बार गोल्ड के लिए ढेर सारी तैयारी की है। सुनते हैं क्या है उनकी तैयारी।
3: बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को, प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन ये है कि 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना गोल्ड।
1: तैराकी में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास की भी बात करें तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और वो भी पैरा स्विमिंग के जरिए। फिर भी ग्लासगो में स्विमर्स की अच्छी खासी भागीदारी होगी। भारत ने स्विमिंग में भले ही कोई पदक अब तक न जीता हो, लेकिन तैराक अनीश गौड़ा को इस बार खूब सारी उम्मीदें हैं।
4: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी बहुत हार्डवर्क हो रही है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाके हमारे देश को प्राउड करें और एक मेडल जीत के वापस आए।
1: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत की दावेदारी है। मेंस कैटेगरी में तपन मोहंती, तपेश्वर

0: ना दास, स्वातिश केपी, सत्यजीत मंडल, जबकि विमेन्स कैटेगरी में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंता पदक के लिए जोर लगाएंगी। तपन मोहंती जिम्नास्टिक्स में भारत के नेशनल चैंपियन हैं। ट्रैक साइकिलिंग में भी भारत का दावा होगा। रोनाल्डो सिंह लेटोंजाम 1000 मीटर टाइम ट्रायल, डेविड बेकहम एलकाटो चुंगो और जेम्स सिंह किथेल्लाक्रम एलिट किरिन, दिनेश कुमार और रोजित सिंह यांगलेम पुरुष एंड्योरेंस और परस्यूट स्पर्धाएं, जबकि सेखो हर्षवीर सिंह 4000 मीटर टीम परस्यूट में साइकिलिंग ट्रैक पर होंगे। 3x3 बास्केटबॉल के विमेन्स व्हीलचेयर कैटेगरी में भारत की चुनौती होगी, जिसमें रीना, रमेश चंद्र गुप्ता, इरेंगबंग रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरिश्चंद्र, रायन्नावर लक्ष्मी रायप्पा शामिल होंगी। लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। पिछली बार भी इस खेल में हमें 2 मेडल मिले थे। इस बार मेंस कैटेगरी में सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल, डबल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार शामिल हैं। विमेन्स कैटेगरी में नयन मोनी सैकिया सिंगल्स में, जबकि रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की डबल्स में सहभागिता होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा खिलाड़ियों से भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ हो सकता है पैरा एथलीटों द्वारा, पैरा खिलाड़ियों द्वारा? संपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
1: जब इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
2: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी, और मैं हर एथलीट को जानता हूं, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
1: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा। दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्यांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारती चुनौती की अगुवाई करेंगे। हमने भारतीय पैरा दल में से कुछ खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों और संभावनाओं के बारे में बात की। ये है डिस्कस थ्रोअर देवेंद्र कुमार।
3: अभी ये मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम है, फुल तैयारी के साथ अभी जा रहे हैं और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
1: पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला का कहना है कि पहले से बेहतर होगा इस बार।
4: 2022 में भी कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया था और अब भी कर रही हूँ। पीछे से अब बेटर है, अब से आगे बेटर होगा, आगे आगे बेटर होता ही जा रहा है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है, बीसीआई और साई की और हमारी सरकार खिलाड़ियों को बहुत ध्यान दे रही है और अच्छी मेहनत करके हम भी पीछे नहीं हटने वाले, देश के लिए मेडल लेके देंगे।
1: तैयारियां आपकी कैसी है?
4: हमारी बेस्ट तैयारियां हैं, हम डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कॉमनवेल्थ में।
1: ये 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
5: इट इज माय फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन, लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट वी गेट इट मेडल रिप्रेजेंट इन इंडिया।
1: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे, यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया।
6: पैरालंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहा है। 5 मेडल तो कंफर्म है, 100% है। 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है। मैं एथलीट होकर बोलता हूँ, एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा।
1: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है, जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए, उनको देखते हुए क्या लग रहा है, कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पर संभावना उनसे देखते
6: है? आप लोग को मालूम है अभी ग्लासगो में बहुत ठंड है, फिर भी मेरा एथलीट पूरा प्रिपेयर है, 100% हम अच्छा मेडल लेके आएगा।
1: अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों की, जिनमें परमजीत कुमार, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी से पदक की उम्मीदें रहेंगी। संभावनाओं पर पैरा पावर लिफ्टिंग कोच राजेंद्र सिंह रहेलू कहते हैं,
7: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है। हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
1: पैरा तैराकी में रवि वीरा, वेंकट बुडगिना, अली इमाम, सुरेश जाधव, चैतन्य विश्वास कुल कुलकर्णी और स्वातिक पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी

0: पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लिशा दास अकेली भारतीय खिलाड़ी होंगी, जबकि महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 टीम में रितु चानू एरेगबम, रीना रमेश चंद्र गुप्ता, मीनाक्षी हरिचंद जाधव और लक्ष्मी रायप्पा चुनौती पेश करेंगी। इस अवसर पर रियो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक से हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों से संभावनाओं पर बात की।
1: संभावनाएं बहुत अच्छी हैं इस टीम में, हमारे कॉमनवेल्थ रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 1 ऐसे खिलाड़ी भी जा रहे हैं। तैयारियों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं, अब 5 विविध स्पोर्ट्स में हमारे पैरा एथलीट जा रहे हैं और लगभग 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें 40% महिलाएं जा रही हैं। मुझे बहुत खुशी है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इस बार उम्मीद है कि भारतीय पैरा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
2: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से विशेष बात की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने।
3: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड।
4: एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मानती इसे, इसको कैसे देखते हैं? गेम्स कम है, होप्स ज्यादा, लेकिन
3: एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है। एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एनीवे 2 मंथ्स इज देयर, दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस बाई बिकॉज द गवर्नमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल association is in one line and they are providing all the facilities which players wants. So exposure is the must. They are getting foreign exposure and all those things, and association is working on it, and lot of sponsors also. For IOA is also giving full support to players. So that I hope that players acha karenge.
4: Last question. 2030 में हम host कर रहे हैं Commonwealth Game. तो यहाँ और कुछ सीखने के लिए होगा, देखने के लिए होगा. IOA इसके बारे में क्या कहेगा? कैसे plan कर रहा है?
3: Our team is there. Our IOA team and government team, all team is there to see what are all the things they are doing. हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा competition तो इधर organize किया है, but फिर भी what are all the changes we have to do, all team will be there.
2: भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी दल से ढेर सारे पदक की उम्मीदें हैं।
5: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे। जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं, तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है। देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
2: ग्लासगो में भारत के लिए खेलों से इतर भी बहुत कुछ होने वाला है, बता रहे हैं भारत के मिशन प्रमुख, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और भारत की डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल।
6: सिंबॉलिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट होस्ट है, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है। वहाँ पे हम लोगों को बैटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस सिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है एक्सचेंजेस जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिंबॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम्स इंडिया को आएगा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
2: कुछ ही घंटे में पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है और एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ मचने वाली है। पदकों की इस आपाधापी में किसी का सितारा चमकेगा तो किसी को जीत के लिए नई सीख और जज्बा हासिल होगा। तो कल से रोमांच शुरू होने वाला है, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हर हलचल, धड़कन और रोमांच के साथ। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान और सहयोगी शाहिद आजमी के साथ धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
7: The Commonwealth Games.
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
9: Listen to your favorite tracks on Kochi FM Rainbow 107.5. Stay tuned.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के

0: दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well